0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी.
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचरता दग जवानको पवख बानी गम उनक लेशी न प रारवान वक की दग जवान की सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन सासु दानी

कॉस्मेटिक स्टोर शाही बाला स्टॉप बिसंग रोड वाल समय का प्रोडक्ट मिला की सवील कॉस्मेटिक्स एंड मोबाइल सेंटर सहीपुल जमरूद किस्म का प्रोडक्ट मिला की शाहिद मेडिकल स्टोर शगई बाजार किस्म का प्रोडक्ट मिला की देखे ना मून फार्मेसी शगई बाजार किस्म का प्रोडक्ट मिला की कमर जमान कॉस्मेटिक्स मीना बाजार शबकदर किस्म का प्रोडक्ट मिला की असगर ट्रेडर मीना बाजार शबकदर किस्म का प्रोडक्ट मिला की फजल कॉस्मेटिक्स मीना बाजार शबकदर किस्म का प्रोडक्ट मिला की एपीयू पिरदून होलसेलर आजाद मार्केट पिरदूस किस्म का प्रोडक्ट मिला की तारिक फार्मेसी चरगान चौक चार सदर रोड वाले समय का प्रोडक्ट मिला की दखेना इलावा बल खबर हो रही दुकान नंबर 4 विकास कॉस्मेटिक्स तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी देखे ना गुवाहाटी की सरबराज का कस्टम का प्रोडक्ट मिलावेगी छोटा लाहौर तू डीरा ना इस्लामाबाद मार्केट ब्लॉक डी की अदनान कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट मिलावेगी देखने अलावा देखे ना ये लगा तुम्हारा खबर ना हो रही है ना सब अभी वाल ना चले कल जमा घिले पे दशहरा शोमलो कैम की शेराली मार्केट दुकान नंबर 6 हर इमरान से जमा प्रोडक्ट मिलावेगी देखे ना ठीक है ना ऐसे मुखा देखे ना मुदा सुख सुख देखे रहे इंशाल्लाह जमा बना कर रवाना ड्रा के बरखावली देखे ना रवान एक ओपन ही देखे रहे पिंजम तारीख बरता शाम कबले देखे ना दो कूपन हो वो रही खबर सर टूल या सा जी।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू द एफएम सलूर नबी रेडियो दिलबर सवाबैना अस्तास रोस अस मरगरे जहांगीर अली सबजई सस खिदमत के हाजिर दे प्रोग्राम दजलो आवाज तरह हिदर धर्म जी तास वरो जोड़ खुश चाले यो द दुआ सरा चे चाप कोर के सब मुश्किल افغان یا سر